0: हाँ जी अप्रूवल हम देते हैं देन वो सेकंड अप्रूवल क्रेडिट टीम से आती
1: क्रेडिट टीम से आती है तो आप ऐसे लेकर अब घूम नहीं रहे हो ना साथ में
0: नहीं नहीं
1: क्रेडिट टीम के पास जी हां ओके सो देयर यू गो सो देयर इज द अदर वे टू एक्सप्लेन टू यू सो यू कम टू आरी ही डस द पेपरवर्क बट पैसे इसके पास नहीं है ही गोस टू द अदर टीम सो वो टीम है वो आपको एक्चुअली पैसे देंगे एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू जंप थ्रू द हुप्स एंड डू द पेपरवर्क जो कुछ भी करना पड़ता है बट आई थिंक वन एडवांटेज जो मैं हरदम नोटिस करता हूं इन गोइंग टू प्रोफेशनल्स आपको खुद बहुत कम हाथ पैर चलाना पड़ता है ना बिकॉज़ यू डू टेक केयर मोस्ट ऑफ द टास्क्स फॉर देम
0: डेफिनेटली अगर कोई बिजी है ना एवरी पर्सन इज वर्किंग
1: जी अभी तो सभी बिजी हैं
0: नहीं टाइम होता तो वो सारा लेग वर्क कौन सी बैंक आपके लिए अच्छी रहेगी वो सारा हम देख लेते हैं जहाँ की आप एक पर्टिकुलर बैंक के पास जाके वो अपना ही प्रोडक्ट बताएंगे ना वो नहीं बताएंगे कि अच्छा आप दूसरी बैंक के पास जाओ वो अच्छे हैं वहाँ पे हमारी एडवाइस फिर आती है काम
1: जी और आते हैं काफी एक टिपिकल क्वेश्चन होता है कस्टमर के और मैं आई डोंट नो जो लोग ऐसे जगह काम करते हैं टाइम टू टाइम आपको ये क्वेश्चन आता होगा कस्टमर आते हैं आपसे बात करते फिर आपसे पूछते कोई और है जो यही प्रोडक्ट बेच रहा है या ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तो हम देन ऑब्वियसली हमें झूठ तो हमें नहीं बोलना चाहिए बट व्हाट कैन वी से देन वी से हाँ है बट वी कांट गिव आउट नेम्स यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड योरसेल्फ तो आई थिंक वही होता है अगर आप बैंक के पास जाओगे एक बैंक दूसरा बैंक का नाम तो नहीं बताएंगे या नहीं बोलेंगे चलो हमसे अच्छा रेट वो दे रहा है बैंक वोंट से दैट टू यू आपको खुद वो हमें करना पड़ता है यू हैव टू गो फ्रॉम बैंक टू बैंक टू बैंक एंड फाइंड दैट आउट और यू कैन कम टू अ मॉर्गेज एडवाइजर एंड दे विल प्रीटी मच डू द जॉब फॉर यू और अभी तो काफी एप्स वगैरह भी निकल रहे हैं वेयर यू कैन एक्चुअली कंपेयर तो आई थिंक दैट्स द other way of going to a person like Ari because he's professional he does his job and obviously aap wahi kaam karte ho then you have all the knowledge all the time to Ram ji vaise agar hum aapka naam hi Ram hai to obviously ye jo puja wagera ke vishay mein to aapko kafi jo malum hoga to back in India because you're not from Bengal right
2: no I am from Andhra
1: to Andhra mein kaise isi tarah jo Durga Puja manai jati hai
2: Durga Puja we also celebrate in Andhra and we also have pandals But not like in Calcutta, Kesari ka nahi hai. Like we also have pendals. Yeah.
1: Agar unse compare karenge.
2: Ah, yes.
1: Ji.
2: And we also do it for the 9 days and the 10th day visarjan and everything. We also follow that.
1: Mm-hmm.
2: So, and coming over here, even in Christchurch, I was, I know the Bengali community right from... where we used to do the pujas in someone's house and all that. And later on in the community, in the Cotswold school and all that. Being a volunteer over there, and now I don't know how I turned up into a sponsor, but I still consider myself as a volunteer over there.
1: No, thank you so much. ये तो सही बात है. Every time I go, I do see you in many events. ऐसा नहीं है. एक event अपने ने आपको काफी events में meet किया है. So I know that you community की जब community की बात आती है, then you are quite प्रेजेंट रहते हो और अभी से नहीं काफी सालों से आप हो क्राइस्टचर्च में यू आर वन ऑफ दोज नोन फिगर्स और जब पंडाल की बात करते हैं देन आई थिंक हम जब जाएंगे हेगली पार्क जिसे हमने बोला था मल्टीकल्चरल जो रिक्रिएशन सेंटर में अगर आप जाओगे आपको लगभग एक तरह का पंडाल की तरह दिखेगा जस्ट बिकॉज इट्स अ 3-story बिल्डिंग तो आपके शायद लगेगा हाँ चलो यू कैन ऑब्वियसली कंपेयर विद द सेम थिंग इन बैक इन बेंगाल मे बी आगे चल के हु नोज इन फ्यू ईयर्स टाइम इफ यू हैव गेट मोर स्पॉन्सर्स अगर और भी लोग जुड़ जाए देन It, that may be possible, kuch impossible to nahi, but I think you should visit Multicultural Creation Center on 17th of October and see for yourself from 9 a.m. Aapko kuch jhalak nazar aayega and you'll be amazed with what the team comes up with. Aur chalo, Shivam ji, aapse baat kiya, kaafi acha laga. And humare paas aur bhi guest hai, otherwise hum aur bhi aapse baat karte. But jaate jaate, just a quick question, agar kisi ko aapki yaad aayi, yani ki agar usko zarurat pad gayi insurance ki, aur insurance zarurat zyada logo ko tab padti jab already kuch ho jata hai. Ya kisi dost ke saath mein hota hai,
3: kisi
1: family ke saath mein hota hai. And then suddenly hume bhi yaad aata hai, हमने नहीं करा ये हमें करना चाहिए बिकॉज जैसे भी एक हाईजेक होते थे प्लेन बच गया तो मेनी पीपल को उतरते बोला होगा चलो हम अपना बिल बना ही लेते हैं बिकॉज नो कुछ भी हो सकता था तो इफ समवन वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू क्विकली तो हाउ डू वी गेट होल्ड ऑफ यू
4: I do have a social media page under Shivam Arora NZ Insurances or you can go on our website www.nzinsurances.co.nz or aap mujhe contact kar sakte ho seedha WhatsApp pe 022-635-7447 and I'm always here to help you to protect you and your family's financial future.
1: थैंक यू सो मच आर्य जी एक क्वेश्चन है जो हर कस्टमर जो जानना चाहता है आई थिंक दिस इज वन ऑफ द

0: कॉमन क्वेश्चंस जो आपके पास भी आते होंगे और जब आप किसी से मिलते भी होंगे, चाहे आपका दोस्त ही होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ेगा या गिरेगा।
1: देखिए कोई भी आपको ऑनेस्टली एक कोई क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं है। हम सब जो देखते हैं कि मार्केट में पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, कि एक्सपेक्टेशन आगे क्या है। अभी आप ग्लोबली देखो तो वॉर चल रही है ना, फ्यूल प्राइसेस आर अप, अपने लिविंग कॉस्ट इज अप, सो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट थोड़े और इंक्रीज होंगे, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है, बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे थैंकफुली, कि अगर वॉर रुक जाती है तो ईयर एंड हाफ में काफ़ी कुछ स्टेबलाइज ही रहेगा अभी।
0: जी हाँ, और अभी इलेक्शन भी आ रहा है, वो इंटरनली अगर हम देखें हमारे कंट्री में इलेक्शन आ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि कोई कुछ कोई डिफरेंट गवर्नमेंट आएगा तो डिफरेंस हो गया एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, या व्हाट डू यू थिंक कुछ चेंजेस होने वाला है ड्यू टू गवर्नमेंट, या तो फिर घूम घुमा के वही जगह हम रखेंगे?
1: डेफिनेटली जब अगर फॉर एग्जाम्पल नेशनल पावर में आती है, अगेन मैं कोई पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं,
0: बट ब्लू पेन क्या है,
1: तो अगर नेशनल आती है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जरूर थोड़े ऊपर जाएंगे, वेयर एज कम्पेयर टू लेबर जिनका थोड़ा बैक स्किल रहता है कि इन्वेस्टर्स की साइड में, तो इट मे टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली अगर नेशनल आती है यू विल सी द प्रॉपर्टी प्राइसेस गोइंग अप।
0: थैंक यू नेथे आरी, एंड एज यू हियर फ्रॉम हिम दैट्स हिज व्यूज ऑन इंटरेस्ट, अब देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आरी शिवम और राम जी, हम आपसे अलविदा लेंगे बिकॉज़ वी हैव गॉट मोर गेस्ट्स कमिंग। अर्पण जी आप रहिए,
2: बिफोर वी गो यू आर टॉकिंग अबाउट पार्किंग, यस डोंट वरी अबाउट पार्किंग, कॉल 3795795 गोल्ड बैंड टैक्सीज एंड मेंशन पूजा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फेयर।
0: ओह वाओ, थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाट वी आर वांटिंग टू हियर। तो जैसे अभी आपने सुना, अगर गोल्ड बैंड टैक्सीज आप कॉल करो, उसका नंबर हम इसी जो पोस्ट में डाल देंगे, यू गेट अ 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच राम। तो चलो, वी आर गेटिंग मोर गेस्ट्स इन टू सपोर्ट अर्पण, बिकॉज अब हमें चाहिए था जो बचे जानकारी एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। सो वी गॉट चेतना हियर, वेलकमिंग हर टू द स्टूडियो, एंड हमारे साथ निशी भट भी ज्वाइन हो चुकी है, धन्यवाद आने के लिए, एंड वी आर गोइंग टू हैव सो मेनी एज वेल। तो चलो सब कमिटी मेंबर्स
2: इधर और जगह है।
0: जी हाँ, तो थैंक यू सो मच, एंड वी आर गोइंग टू ग्रीट द कमिटी। सो दिस इज द हार्ड वर्किंग कमिटी, और हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की, जो 17th October 2026 है, विच इज नॉट फार ऑफ बिकॉज अक्टूबर शुरू हो चुका है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अक्टूबर हैज स्टार्टेड एंड द टाइम इज 9 AM आपको पहुँचना है, एंड इट ऑल स्टार्ट्स। तो समय आप बताइए कि ये जो 9 o'clock आप डोर ओपन कर रहे हो, तो
3: हम लोग एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फ्री इवेंट टू एवरीबॉडी, एंड वी वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट ओनली द इंडियन बैकग्राउंड बट एवरीबॉडी एल्स। स्टार्ट विद आवर पूजा सेटअप इज ऑलरेडी गोज ऑन फ्रॉम 9 o'clock। अपार्ट फ्रॉम दैट, देन इमीडिएटली स्टार्ट्स सम किड्स एक्टिविटी, वी हैव अ मैजिक शो, वी हैव सम स्मॉल मिनिएचर ट्रेन काइंड ऑफ विल बी रनिंग अराउंड दैट इवेंट सेंटर, and we do have other children activities, so like a face painting, balloon, ballooning and other stuff will be going on. And after that, we'll be having there will be some performances, cultural programs. In between, we have foods. So that's there will be a vegetarian free food for everybody. And it's been prepared by one of our members. So it's been like a whole heart is going on to that food. Pretty much, and then after that we'll be having about 2.5 hours of cultural program, where various cultural programs will be displayed. Not only the Indian, there are multi country sort of.
0: जी हाँ, जो परफॉर्मेंस सभी कंट्री से, और आई थिंक ये जो कम्युनिटी ग्रो हो रहा है, नथिंग इज ए मल्टी एथनिक जो कॉन्सेप्ट है अर्पण जी, वेन एवर आई कम वी आर मिसिंग अमित टुडे और अनदर अर्पण ऑफ कोर्स, एंड देयर आर मेनी अदर कमिटी मेंबर्स, बट आई नो देयर इज अनदर प्रोग्राम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, जिसकी जानकारी वी शुड बी एक्चुअली गिविंग इट, बट आई थिंक वी विल वेट फॉर द लेडीज टू टॉक, तो फिर हम उससे पूछेंगे, इसलिए मैंने बोला कि हम जितना बात कर सकते हैं बात कर ले बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू देम।
4: गुड डिसीजन विनेश जी, आप जानते हैं कि वंस लेडीज स्टार्ट टॉकिंग, उसके बाद
0: कहाँ
4: ही मौका मिलने वाला
0: है
4: इन लोगों को बात करने का।
0: जी हाँ, तो सभी उनसे बात करने से पहले क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज योर फेवरेट डिश?
3: माय फेवरेट डिश एक्चुअली द मिक्स वेज, व्हाट इज बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल द मिक्स वेजिटेबल्स विद द एंड द खिचड़ी,
0: दैट इज अ बंगाली डिश।

0: Correct, correct.
1: And yeah.
0: आपको ये फिश एंड चिप्स ये सब नहीं पसंद?
1: नो नो मैं डोंट लाइक
0: नो नो नो डेफिनेटली एंड आई पर्सनली आई डोंट लाइक दोस फिश एंड चिप्स आइदर दोस काइंड ऑफ बट आल्सो ऑन टॉप ऑफ दिस वी डू हैव ए गुलाब जामुन व्हिच इज अ ट्रेडिशनल यू नो द बंगालीज आर फेमस फॉर
1: जी हां तो इफ यू आर कमिंग टू डू द पूजा ऑन दैट डे 17 जस्ट फॉलो सोमेन जस्ट ईट व्हाट ही ईट्स एंड या यू विल डेफिनेटली नॉट गो रॉन्ग तो उस दिन या डोंट गो टू मैकडॉनल्ड एंड केएफसी जस्ट कम स्ट्रेट एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट तो आपको कुछ अलग मिलेगा खाने के लिए तो अरफान जी बिफोर यू गो टू द लेडीज फ्रॉम यू आई नो यू आर ऑल प्रिपेयर्ड कोई इंडिया से या बंगाल से कोई आ रहा है इस फेस्टिवल के लिए
2: बंगाल से ऑलरेडी आ चुके हैं अमित के पेरेंट्स अंकल और डैड आ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए और साउथ आइलैंड के दूसरे रीजन से भी लोग आते हैं
1: जी और जो पंडित जी जो कोई पूजा उजा कराने का सब तैयार हो चुका है
2: सब तैयार हो चुका है हम पंडित जी भी अच्छा करेंगे हम सब कुछ वो पूजा के मामले में खाने के मामले में सब कुछ तैयार है कल्चरल अभी भी चल रहा है प्रिपरेशन कल्चरल कभी खत्म ही नहीं होता और हम काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वी हैव गॉट इन द कल्चरल इवेंट वी हैव गॉट मोर देन 77 पार्टिसिपेंट्स दिस टाइम 77 आई थिंक इट हैज क्रॉस्ड 80 नाउ 80 participants in our cultural event.
1: Yeah. And अभी समय लगेगा I think 9 PM.
2: और उनको chronologically order करना क्योंकि it takes time.
1: Takes है जी. Fast forward भी करना पड़ेगा ना बीच में. Fast forward button दबाना पड़ेगा. जी हाँ. Because I know time flies और जब performances वगैरह होती है and then आप अगर 5 मिनट यहाँ lose करते हो then cover up करना मुश्किल हो जाता है. So I'm sure you are going to have some fun doing that.
2: Yes.
1: और there's one more question मुझे पूछना था before I talk to the ladies. वो है I know many लोग काफी लोग जो सुनते हैं और जब पूजा की बात आते हैं I know especially crisis यहाँ पे जो काफी लोग हैं you know when they hear about puja they want to come और लोग पूजा करने की भी इच्छा रख के आते हैं एनीथिंग कुछ अवेलेबल यहाँ पे होता है किन दे कम एंड मे बी ब्रिंग द प्रसाद एंड डू द पूजा
2: हाँ वो लोग ला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे सुबह जो 9 से 12 पूजा है उसके बीच उसमें आप पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं पंडित जी आपको मंत्र बोलेंगे आपको उसको ये करके फूल हाथ में लेके भगवान को आप ये कर सकते हो पूजा कर सकते हो और इसके अलावा भी हम एक चीज हमने अभी तक बताया नहीं क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा इस बार क्राइस्टचर्च हेरिटेज फेस्टिवल का पार्ट है तो हम विल बी बंगाली हेरिटेज ये दुर्गा पूजा जो कि यूनेस्को से स्वीकृत किया गया है तो उसको हम वी आर ब्रिंगिंग यू अ टच ऑफ कोलकाता हियर वी आर ब्रिंगिंग यू शाम को जो है फॉर मैरिड वीमेन वी हैव गॉट सिंदूर खेला और वी हैव गॉट धुनुची नाच ये देखने लाइक इवेंट्स हैं जो लोग कभी देखे नहीं है आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम एंड आफ्टर द कल्चरल इवेंट आफ्टर 5 PM ये सब होने वाला है शाम को भी
1: जी हाँ तो आपको बैठ के देखना है या जैसे भंगड़ा होता है ज्वाइन हो जाओ
2: नहीं ज्वाइन हो जाओ ये डांस है तो डांस में ज्वाइन होने का
1: ओके तो आप शामिल भी हो सकते हो सो दैट्स गुड न्यूज अगर आपको पता है तो ठीक है बट आई नो देयर मेनी पीपल दे विल जस्ट ज्वाइन एनीवे वो लोग देख देख के कॉपी कर लेते हैं लेकिन मैं और साहिल विल जस्ट वॉच एट अ डिस्टेंस एट अ सेफ डिस्टेंस हम देखेंगे तो चलो सॉरी फॉर होल्डिंग यू बैक तो चलो आप शुरू हो जाओ चेतना जी आप हमें आई थिंक आप शुरू करते हैं जो अभी इसके बाद में इवेंट होने वाला है ना इट्स 6:30
3: नहीं हम बिल्कुल शुरू करेंगे इन्हीं की बात करते हुए हम पहले माँ को प्रणाम करेंगे और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे ये मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये एक अमेजिंग बहुत ही अच्छा इवेंट है इवेंट कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे बिकॉज इट कम्स विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव वाइब मैंने जितनी बार भी अटेंड किया है और जब से मैं क्राइस्टचर्च में हूँ मैंने हर साल ये अटेंड किया है जो टीम है पहले मैं उनके बारे में बात करूंगी दे आर सच अ सोबर पीपल कि ये 11 साल से यही एकदम क्लासिक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये इतनी मॉडेस्ट टीम है कि आप कभी भी इन्हें ओवर एंड अबव आके मार्केट करते हुए और बात करते हुए नहीं देख पाएंगे ये जब भी बात करते हैं बहुत दबे शब्दों में बहुत धीरे धीरे ही अपने काम मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग बट फिर भी उसका क्रेडिट एकदम से अपने पे नहीं लेना चाहते हैं सो द टीम फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी आई फील बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड टीम है और ये लोग जेन्युइनली माँ के लिए ये इवेंट कर रहे हैं क्योंकि ये शायद सबके बीच में वो पॉजिटिविटी और वो आशीर्वाद हम सब तक फैलाना चाहते हैं सो सबसे इम्पोर्टेंट वही है और देन कम्स द फन पार्ट अमेजिंग फूड होता है यू जस्ट गो अराउंड एंड यू कैनॉट कम बैक हंग्री आप सोचते रह जाओगे

0: कि ये खाना है या ये खाना है या ये खाना है. दे हैव अ वेरी ह्यूज नाइसली स्प्रेड मेन्यू, फैंटेस्टिक फूड टू एंजॉय. और इनके जो परफॉर्मर्स हैं दे आर अमेजिंगली ऑसम एंड आई एम हैप्पी टू सी कि 9 to 9 इन्होंने हर परफॉर्मर को काफी रिस्पेक्टफुली पूरा टाइम देने की कोशिश की है. देयर इज नो रश, देयर इज नो मूविंग ऑन. सब लोग बहुत पेशेंटली बैठकर आराम से प्रोग्राम एंजॉय करते हैं. सो इट्स सुपरली गुड. मैं अपनी तरफ से पर्सनली भी डेफिनेटली कहूंगी कि इट्स वर्थ कमिंग इन एंड बींग अ पार्ट ऑफ.
1: जी हाँ, डेफिनेटली. जैसे आपने चेतना से सुना है, यू शुडंट मिस दिस फॉर एनीथिंग एल्स. अगर आपने और कुछ कमिटमेंट किया है, बुक किया, देन व्हाट चेतना इज बेसिकली टेलिंग यू, कैंसिल कर दे और इस इवेंट में आ पाए.
0: तो
1: जी हाँ. और चेतना जी, जस्ट बिफोर आई गो टू निशी, आर यू फ्रॉम बेंगाल?
0: आई एम फ्रॉम इंडिया, विनिशी. यस.
1: तो इंडिया और बेंगाल कितने दूर पे?
0: दोनों बिल्कुल ही दिल के एकदम करीब. नहीं बिल्कुल नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी टू से मैं डेफिनेटली पंजाबी हूँ एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई हैव वेरी अमेजिंग अर्पण एंड शोभा इज वेरी क्लोज फ्रेंड्स. So definitely Bengali somewhere in my heart.
1: जी हाँ. तो आप सिंधु खेला खेलोगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल. जब ये बात हो रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने पिछले साल के पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ. इट्स अमेजिंग, यू विल हैव ऑल द फन विद सिंदूर खेला. मुझे लगता है मैं ही सब बोल, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं ही शायद सब बोल दूंगी. बहुत खूबसूरत डांस और सबके साथ मिलजुल कर, जिस तरह यू डोंट इवन बॉदर कि सिंदूर आपके कपड़ों पर आ गया है और आपकी साड़ी पर है. You just have all the fun. ऐसा उस वक्त महसूस होता है जैसे माँ आपके साथ है, वहां नाच रही है आपके साथ उस पंडाल में. It's so beautiful.
1: Thank you. चलो निशि, आप बताइए कि आज आपका दिन कैसे गुजरा?
2: बहुत अच्छा विनेशी. बस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ में. जब हमारे जो सोसाइटी होती थी वहां पे भी दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होता था, तो हम लोग तो जब छोटे थे तब पहले गरबा, पहले माँ की स्तुति होती थी, माँ की स्तुति के बाद फिर हमारा गरबा होता था. एंड देन जैसे कि चेतना जी और अर्पण जी ने भी बोला कि सिंदूर खेला और धुनी जो डांस होता है उसका मैं वेट करती थी टिल द इवनिंग, बिकॉज वो सबसे बेस्ट पार्ट होता था. उस टाइम पे तो मैरिड नहीं थी बट आई स्टिल लाइक यू नो इन्जॉय दैट पार्ट, बिकॉज वो डांसिंग मोमेंट्स ही ऐसे होते हैं कि आपको वो देखना बड़ा अच्छा लगता है. और लोग जिस तरह से ज्वाइन होते हैं ना उसके बाद में कि आई एम नॉट फ्रॉम बंगाल बट स्टिल लाइक यू नो दैट कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, इट्स द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. तो इट्स जैसे चेतना जी ने बोला कि इट्स ब्लेसिंग्स. तो आपको अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप वो बॉदर नहीं करते हो कि मैं इसमें पार्ट लू या ना लू, आप जस्ट इंजॉय करने के लिए ज्वाइन हो जाते हो और आपको फील होता है कि यस माँ इज विथ यू. तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ 17th of October के लिए. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग आइए. और जैसे कि बाकी सब चीजें चेतना जी ने हाईलाइट कर ही दी है, देयर आर लॉट ऑफ परफॉर्मेंस. ओके, फूड भी बहुत अमेजिंग होगा. बट मैं सोच रही थी गुलाब जामुन की जगह अगर संदेश होता या फिर रसगुल्ला होता तो
1: संदेश
2: हाँ तो फिर और मजा आ जाता.
3: देखते हैं माँ का क्या इच्छा है. अगर माँ का इच्छा है तो संदेश भी हो जाएगा.
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो भी एक पार्ट होता है ना लाइक बंगाली कल्चर. तो या सो मेरे एक्सपेक्टेशन वैसे है बट या स्टिल आई एम हैप्पी विद द गुलाब जामुन. सो दैट्स व्हाई
1: मैंने अपन को शुरू में वॉर्न कर दिया था कि होने वाला है.
2: नो वरीज. सो आप, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग आइए 17th ऑफ अक्टूबर को. और जैसे कि ये है 455 हैडली एवेन्यू में, तो आप उस दिन के लिए कोई और प्रोग्राम मत कीजिए. जस्ट यू नो आइए, इंजॉय कीजिए. लाइक देर आर लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस और फूड भी इंक्लूडेड है 9 to 9 PM. तो होपफुली आपको डिनर भी प्रोवाइडेड ही होगा. सो या प्लीज प्लीज ज्वाइन विद अस. और अब मैं
1: जी हाँ, इससे पहले कि निशे और भी चीजें जोड़ना शुरू कर दे हमारे चलो भाभी का पास जाते मैं भी विल बी अ बिट सेफ अभी था. तो भाभी का जी, आप बताइए कि ये जो दुर्गा पूजा, ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग फॉर टू इट, और धवल ऑफ कोर्स ही वुड बी एक्साइटेड एज वेल. जी हाँ, तो आप बताइए कि व्हाट डू यू नॉर्मली डू ऑन दुर्गा पूजा? आर यू मोर रिलेटेड टू गरबा या दुर्गा पूजा?
4: अनफॉर्चुनेटली जब लोग हम इंडिया में थे तो ज्यादातर हमारा गरबा से ज्यादा था. बट फॉर्चुनेटली इनफ आफ्टर वी हैव मूव्ड टू क्राइस्टचर्च वी हैव बीन रेगुलरली विजिटिंग दुर्गा पूजा. तो यहाँ पे ज्यादा जाके मुझे पता चला. एंड लाइक निशी सेड दैट एंड इवन चेतना सटके बहुत अच्छा रहता है लाइक यू नो एवरीवन बहुत ही पेशेंटली कामली एंड दे जस्ट वेट टिल द वेरी

0: event to let all the kids perform and showcase their talent, or बहुत ही अच्छे से like you know everyone enjoying at their own mood के जिसे खाना है वो खा रहा है, बाकी के लोग enjoy कर रहे हैं, कुछ बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही like you know family event जैसा रहता है, like no pressure, nothing such, like do what you want, just be there and enjoy.
1: जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं दैट वी डू स्पीक टू द कमिटीज, ताकि हम आपको कुछ बिहाइंड द सीन का भी एक्सप्लेनेशन दें, बिकॉज हम जब जाते हैं इवेंट्स में देन वी सी व्हाट वी सी, बट पीछे अगर देखा जाए बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग होते हैं, अर्पण है, वेबर्ट सोम है, नमित, और बहुत लोग हैं इसके जो पूरे कमिटी पीछे जुटे होते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट वो एवरीथिंग फ्लोज स्मूथली. और कभी अगर किसी ने गाड़ी अगर रॉन्गली पार्क कर दिया देन समवन हैज टू डू दैट, स्टेज पे आना पड़ता है, अनाउंस करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको शिफ्ट करना पड़ता है, फिर कभी कभी ऐसा, काश ऐसा ना हो और हम होप भी नहीं करते ऐसा हो, बट थिंग्स डू गेट लॉस्ट, बच्चे भी गुम हो जाते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम द मैजिशियन ऑफ कोर्स, वो तो नहीं करने वाला, लेकिन इफ थिंग्स डू हैपन देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली नो फ्रॉम द वीडियो कि कौन लोग को आप अप्रोच कर सकते हो, सो दैट यू कैन क्विकली इन्फॉर्म देम, बिकॉज आई नो भीड़ भाड़ में पता नहीं चलेगा, इफ यू कैन गेट होल्ड द एमसी दीस आर द पीपल आप अप्रोच कर सकते हो, सो दैट देन दे कैन हेल्प यू फाइंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आई नो थर्सडेस हो भी सकता है बिकॉज ऑफ दिस इवेंट काफी लोग होते हैं, बट आप आइए 9 AM जो शुरू हो रहा है, पूजा में भी आप भाग ले सकते हो, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है जैसे अर्पण ने बोला अ बिग नंबर, सो इट विल बी नॉन स्टॉप चलते रहेगा. एंड द अदर ब्यूटी अबाउट दिस वन इज इट्स आई थिंक 3-story जो बिल्डिंग है, एंड देन देयर बी जैसे लास्ट टाइम मैंने गया था एग्जीबिशन वगैरह था, इस बार आप कर
2: हाँ हमारा एक हेरिटेज स्टॉल हो रहा है वेयर वी विल डिस्प्ले ऑल डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स ऑफ बंगाल. इट इज फॉर डिस्प्ले एंड अवेलेबल थ्रू आउट द डे, आप लोग आइए वो देख सकते हैं. हमारा और एक चीज़ भी है, हमारा फोटो बूथ है, और हमारा कोलकाता का एक हेरिटेज चीज़ है येलो टैक्सी, हम वो ला रहे हैं आपके लिए, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो.
1: जी हाँ, सो देखो तो फोटो बूथ भी है, तो वैसे तो आई नो आप अपने जो बेस्ट जो कपड़े पहन के आने ही वाले हो, कहेंगे ना सुहाग पे सुहागा, क्या बोलते हो,
3: सोने पे
1: सुहागा, तो यानी कि आपको फोटो भी खींचने का जो मौका मिल जाएगा, सो यू कैन डू दैट एट द सेम टाइम, तो काफी मजा आने वाला है. कम विथ योर फैमिली, फैमिली इवेंट है, बच्चों के साथ आइए, पूरे परिवार के साथ में आइए, आई नो पीपल वुड बी विजिटिंग यू, अगर बाहर देश से कोई विजिट कर, ब्रिंग देम ऑन, आइए. और इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ इवेंट जहाँ पे हम कहेंगे मल्टी रेशियल मल्टी कल्चरल, सभी परफॉर्मेंसेस वैसे भी होने वाला है, सो या यू कैन जस्ट ब्रिंग योर माइक्स एंड ऑल दोस पीपल, आप आइए, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ पॉसिबल, तो आपको पार्किंग का भी झंझट नहीं रहेगा, अदरवाइज हमारे जो गोल्ड टैक्सीज तो है जिसको आप 10% डिस्काउंट पे भी आपको पहुंचा देगा, सो कम एंड हैव फन, बहुत कुछ है वहां पे देखने के लिए और काफी कुछ है. और अगर बंगाल की बातें किया जाए देन इट एक, अगर इफ यू रियली रियली गो बैक इन टाइम देन दे वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, हम कहेंगे जो होल्ड किया था इंडिया, 34% वाज व्हाट द इकोनॉमी वाज लाइक एट दैट टाइम, फिर थिंग्स ऑब्वियसली चेंज, लेकिन व्हेन पीपल रिगार्ड बंगाल क्वाइट स्ट्रॉन्गली, आज के भी अगर दिन में देखा जाए देन आई थिंक दैट कम्युनिटी को काफ़ी हाई रिस्पेक्ट दी जाती है, मैनी हम कहेंगे बहुत पॉपुलर पीपल और नॉन फेसेस हैव कम आउट ऑफ बंगाल कम्युनिटी, और यहाँ पे हम जब क्रशिश में रह रहे हैं एंड आई थिंक द सेम हमें फीलिंग मिलता है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं एंड वी गेट द फील अबाउट नो फ्रॉम ईच काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट इंडिया, कि देश तो एक है बट अलग अलग जो कम्युनिटी है दे ब्रिंग देयर ओन काइंड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी गो एंड एन्जॉय देम, एन्जॉय दैट, हम देखते हैं, सीखते हैं और भाग भी लेते हैं, और आई थिंक वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट बीइंग इन क्राइस्टचर्च. तो अगर आप क्राइस्टचर्च में हो या तो फिर कहीं निकट भी हो, आना चाहते हो, अभी भी टाइम है, 17th October, बुक इन योर फ्लाइट एंड कम ओवर एंड हैव लॉट्स ऑफ फन. तो शुड वी टॉक अबाउट, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ सारी
2: वो तो मैं लास्ट के लिए रखा था. आज हमारे क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी की तरफ से फ्री वर्कशॉप हाउ टू वेयर अ बंगाली स्टाइल साड़ी, वो अभी हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एट 6:30 PM एट द सेम मल्टीकल्चरल सेंटर 455 Hagley Avenue. आइए, इट्स अ फ्री वर्कशॉप, आपको बंगाली स्टाइल से कैसे साड़ी पहनना है वो ये करेगा. By the way, I'm not involved in that, but the ladies are there, and और काफी लोग आने वाले हैं.
1: जी हाँ, सो जैसे अर्पण ने बोला, तो आज एक जो प्रोजेक्ट है दे हैव कम अप विद दिस आइडिया कि जस्ट बिकॉज अभी जो बंगाली इवेंट आने

0: वाला दुर्गा पूजा है ना, नो अभी तो है, हम जब गरबा में जाते हैं नो पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट गरबा कंड ड्रेस जो भी होता है, निशी विल बी एबल टू टेल अस बेटर. तो लोग आर डूइंग दैट एज वेल, जब हम पूजा में जाते हैं देन वी ट्राई टू वेयर दैट. तो दैट्स हैपनिंग इन क्रशेश एज वेल एंड मार्केट भी ग्रो हो रहा है एंड एक्चुअली वी आर एबल टू गेट दोज प्रोडक्ट्स नाउ डेज कम्पेयर टू मे बी पहले अगर मिलता नहीं था, अभी मिल रहा है, देन पीपल आर ट्राइंग दोज थिंग्स एज वेल. तो इसी तरह साड़ी भी है, वी नो आई मीन साड़ी इज वेरी कॉमन जो हमारे जो लेडीज पहनते हैं और कहा जाता है जो साड़ी पहनता वही सबसे खूबसूरत. इज इट करेक्ट?
1: ऑफ कोर्स, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे हमें साड़ी.
0: तो दिस द थिंग अबाउट अ साड़ी. तो अगर आपको बंगाली स्टाइल में अगर जानना कैसे पहनना है देन यू कैन कम टू द सेम वेन्यू 455 हेगली एवेन्यू. आज 6:30 PM से शुरू हो रहा है. जस्ट कम ओवर देयर, द टीम इज वेटिंग फॉर यू और दे विल टीच यू या तो फिर आपको डिस्प्ले या दिखाएंगे कैसे साड़ी पहना जाता है. समथिंग न्यू फॉर यू, आप आइए और एक्सपीरियंस कीजिए. तो हमारा जो समय है ऑन फ्रीक्वेंसी, वी आर काइंड ऑफ गोइंग देयर. सो हमें अपना जो फ्रीक्वेंसी है तो यहीं पर स्विच ऑफ करना पड़ेगा, बट वी विल जस्ट कैरी ऑन विद फेसबुक लाइव जस्ट इफ एनीबॉडी एल्स इज आउट देयर हु वांट्स टू जॉइन अस. तो चलो जो हमें फ्रीक्वेंसी में सुन रहे हैं हम आपको अलविदा कहते हैं. सेल्फ वीव सॉन्ग टू प्ले जी, तो एक सॉन्ग हम छोड़े जाते हैं फ्रीक्वेंसी लिसनर्स, यू कैन लिसन एंड सॉरी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा टाइमिंग खत्म होता है, बट हम जुड़ जाएंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे इसी तरह 6 o'clock विद साहिल अगेन ऑन पेंडिंग विद प्लेंटी ऑफ सॉन्ग्स बट नॉट अनफॉर्चुनेटली टुडे.

0: यार आने को नहीं तो तब न दे तो ते ओ टाइम में जकी ता ये ते तैयार हो गई ता ते तो ते अंगी तो बनी गई ता तो ते योगी ता तो ते तब न दे तो ये कई मांग तो रोंग आपू है यार
1: Yep.
0: आने को नहीं नो लेट लेट मील डू नॉट ईट लेट सेवरल आवर्स बिफोर बेड
1: Yep. Amen. Amen. Praise the Lord.
0: Amen.